तेरा हाय कसम यही खाए तेरे कदमों में झूमती बहार बिछा दूंगा जो तू मिल जाए गजब हो जाए